0: खावा
1: आधी मलाइक चानस हवा
0: जरा दम खावा
1: पर मलाइक चानस हवा
0: जरा दम खावा
1: अग मलाइक चानस हा हा हा हवा।

बसरो सुन कह बसुन कह ये संतेला अनमाहिम चाहलवा दे तोय तुला गपोरी माहिम चाहलवा दे तोय तुला।

हम हिलता इश्क हता एटम वाहम हे गंगू तारुण्य तुझ बे भाम हिलता इश्क हता एटम

तुमसा कोई दूसरा इस जमीन पे हुआ तो रब से शिकायत होगी। तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले

0: जावा
1: पर मलाइक चानस हवा
0: दर दूर जावा
1: अज मलाइक चानस हवा
0: दर दूर जावा
1: अग मलाइक चानस हवा।

0: खावा
1: आधी मलाइक चानस हवा
0: जरा दम खावा
1: पर मलाइक चानस हवा
0: जरा दम खावा
1: अग मलाइक चानस हा हा हा हवा।

0: मलाइक चानस हवा
1: नक्को नाम देवा
0: थोड़ा सा चानस हवा
1: पूरा नाम देवा
0: मलाई वड़ा चानस हवा
1: देते नाम देवा
0: आता सगड़ा च चानस हवा
1: राहु नाम देवा
0: आता सगड़ा च चानस हवा
1: राहु नाम देवा
0: आता सगड़ा च चानस

बाम हिलता इश्क हता एटम बाम हे गंगू तारुण्य तुझ बे भाम हिलता इश्क हता एटम

हम हिलता इश्क हता एटम वाहम हे गंगू तारुण्य तुझ बे भाम हिलता इश्क हता एटम

0: आपली पसंत आमची आवड, मनस्वी संगीत, शेती, महिला, आरोग्य आणि विशेष कार्यक्रमांचा नजराणा, आपला रेडिओ तेरणा. ऐकत रहा, आनंदी रहा. रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं, आपला आवाज.
1: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी. कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी. जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था.

नहीं मरना गवारा प्यार में, तुमसे ये कहना है तुम्हें भी जिंदा रहना है, मुझे भी जिंदा रहना।